0: हजुरको रेडियो 102.1 MHz।
1: रंग बहार रंग बहार
2: वर्ष संगे उपहार उपहार बम्पर मा यामाहा रेजियर
1: वर्ष पेंट से घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनु होस्।
2: साथै 65 इंच को स्मार्ट टीवी रेफ्रिजरेटर वाशिंग मशीन लगाए 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहार पनि
1: घर रंगाओ खुशी बनाओ उपहार जित्ने अवसर पाओ। वर्ष पेंट

0: तो नशे चरस के तेरे नखरे ना किसी के बस के ले बिबनीट पकड़ बीट पकड़ जोर लगा थोड़ा घस के
1: तेरे नाल नचना तेरे